0: Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu.
1: अभी आप सुन रहे थे तिलोश रेडियो पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आलाप। That was Alap, an Indian classical music radio show.